छोड़कर मैं भी सब कुछ इसलिए छोड़कर मैं भी सब कुछ सिर्फ सल्ले अला कर रहा हूँ, इसलिए छोड़कर मैं भी सब कुछ।